0: होस् बच्चाहरूमा निमोनिया,
1: झाडा पखाला,
0: दादुरा,
1: पोलियो,
0: कुपोषण,
1: एनिमिया,
0: मम्स,
1: दम,
0: टाइफाइड
1: र पिलिया। नवजात शिशुमा सामान्यतया देखिने छालाको पहेँलो रङ जस्ता समस्या देखिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
0: अत्याधुनिक उपकरण र गुणस्तरीय सेवा नै हाम्रो प्रतिबद्धता। एचसीआरसी अस्पताल,
2: चारवाहिनी रोड, नेपालगंज, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-538-150, 081-535-151।

हिमाल पहाड़ तराई जोरसंग सबैलाई बिहान 8 बजे को भेरी हाइलाइट्स ढिलो रावत का नमस्कार। अहिलेसम्मका मुख्य खबर में कर्णालीबाट 3.5 अर्ब को कृषि जन्य उपज निर्यात, कृषि र पशुजन्य उपज को निर्यात बढ़ो। कर्णाली कैडोर को छाड़े भीर में पहिरो खस्दा सड़क अवरूद्ध, यात्री र सवारी साधन बीच बाटो में अलपत्र। एनपीएल को खेल तालिका सार्वजनिक, पहिलो खेल में लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम खेलने। हिमाल पहाड़ तराई जोरसंग सबैलाई बिहान 8 बजे को भेरी हाइलाइट्स ढिलो रावत का नमस्कार। अहिलेसम्मका मुख्य खबर।

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम, रेडियो भेरी एफएम,
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़।